या गीता सवें आई चाहिए कार्यक्रम संपैता मुकलिया कोंगनी नाथ कार्यक्रमान मिलता पर एक पोटी देव बरे करूं इधर वरेक कोंगनी पदा कोंगनी नाथ कार्यक्रम ऐको नसल्यात ऐकोन रावत रेडियो निनाद 90.4 FM हे जनमनाचे नाद तरंग